0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत।

है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की।
अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी।

0: जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी।

0: मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
1: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा चल नहीं
2: सकता। उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
7: नहीं होने देंगे, बिल्कुल।
6: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचार

0: food below!
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
5: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
6: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
5: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
6: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tum, Bande Ko, T Kona Mangahai, Durant, Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गईं

0: लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भईल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: कर लो।
1: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
0: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं, तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
1: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
0: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
2: माँ
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
2: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
0: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
2: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
1: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
2: ये देखो दीदी, ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
0: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
3: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
4: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट।
1: माँ
3: ये चाकू देख रही है ना,
4: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
4: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
1: माँ
4: हट रास्ते से।
1: माँ
5: क्या हुआ?
1: देखो जल्दी
5: आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना,
1: छोड़ दो।
5: मुझे मत मारो,
1: कुछ मत करो।
5: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
3: जल्दी
5: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
4: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे अरे मेरे पास तो छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
4: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
5: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: अच्छा, हाँ।
1: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
1: हेलो।
3: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा।
3: हाँ हाँ।
1: पापा
3: हाँ, बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
3: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
3: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना सभी जान
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे।

0: मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: करेंगे। आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सुबोध जी।
0: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा।
2: थैंक्स सुबोध। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in a short while. Benchmark domestic indices rise for the fourth straight day. Sensex adds over 300 points. Nifty settles above 24,000. And global crude oil prices rise.

0: विकेट्स मिली हैं एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है. तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज्यादा बेटर था, बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये, और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं. एंड उसके बाद जब हमारी जेनिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को, और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती हमारी हरमनप्रीत कौर, तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को खत्म करके आ सकते हैं. और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है.
1: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट. कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
2: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
1: Right.
2: So, it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa.
1: Which is the bigger one.
2: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So, there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
3: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं. हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084, 2342-1085. और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. नमस्कार.
4: नमस्कार, मैं आपका रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ कारंजा घाटी से.
3: जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है.
4: अब पहले मैच में तो हमारा परफॉर्मेंस जरा बात सही है, लेकिन हमारे जो पेस बॉलिंग का मसला है उसमें थोड़ा हम कहीं से भी कमजोर लग रहे बाकी टीमों से. और शेफाली वर्मा और जिमिमा राजपूत का जो फॉर्म है उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है. तो इसके लिए क्या आविष्कार कार्यवाही इन दोनों पेस बॉलरों के लिए कुछ करेंगे, इसके ऊपर मेरा सवाल है.
3: जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था. उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है.
5: ठीक है, बट शी इज अ प्रूवन कस्टमर, काफी रन्स बना चुकी है तो, एंड शी इज गॉट क्रेडिबिलिटी. और बैकग्राउंड उनका जो है, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता. सो कंसिस्टेंसी, द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड देयर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली. दैट्स व्हाई द टॉस इज इम्पोर्टेंट. इंडिया गोइंग टू बैट, बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस.
1: एब्सोल्युटली. एंड कमिंग बैक टू वैशाली हियर, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150, and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up.
0: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है, दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही है T20 का, एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नजर देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों टीमें एक दूसरे के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं. ओडीआई में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है. तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जेमिमा का भी बल्ला चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोर बोर्ड पर दिखते हैं. तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का, और रेड्डी की जगह पे उनकी, अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज कम्पेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड नंदिनी उस जगह को, उस स्थान को बखूबी निभाएंगी, और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस पिच पे, तो वो चीज देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से.

0: एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफी अच्छा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए.
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया. हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
2: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट ए वेरी बिग स्कोर टुडे.
1: जी बिल्कुल. और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना. इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट, सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स, स्मृति ब्रिंग्स हर ए गेम.
3: 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओनली 2 क्रिकेटर्स टू फाइंड

0: नजर आ रही थी, दो जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मानधाना के साथ 91 रन की साझेदारी हुई थी बीच वहां पर, और दोनों बॉल ही खेल रही थी, लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था।
1: Yeah, that is very important. अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम को ज्यादा ही

एंड शॉट ऑफ लाइन के अंत बैकवर्ड पर गई, ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है। फील्डर खड़ी थी बहुत तेजी के साथ, उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते हैं। भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन, स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन। और अब शैफाली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का, हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से और

0: Exchequer, this is running down towards the fence. Will it go for four? And, oh, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 15 lead. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35-50, Manoj Kumar's decision is bang on. 30 never gone. 1 for 127.
1: स्मृति ईरानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो कभी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां किसी भी पल परिस्थितियां बदल जाती हैं. शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफी होती है और इस तरह शैफाली ने अर्धशतक जमाया. भारतीय के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया, एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे. 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. स्मृति खेल रही है 50 पर, जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही है 8 रन के स्कोर पर. 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही है. दाएं हाथ की इनकी गेंद, स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था, कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती है. तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर. ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है. स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को. नीदरलैंड की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है, नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया. इस बीच गेंद थोड़ी हवा में थी मिडॉन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी, रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को. स्मृति का स्कोर 50 रन, अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ है. 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम और देखना है कि किस तरह से ये राउंड द विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है. हवा में थी गेंद, फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया. इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है, दर्शक क्षमता काफी बड़ी संख्या में लोग और यहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं. इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, फिर गेंद को लपेट के मारा है ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा. 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर. 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी. बेसिस गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको. स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है विश्वनाथ.
0: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
1: Over disc का ये आखिरी गेंद थी उनके शॉट ऑफ लाइन गेंद, तीर गेंद को मारा है बाउंड्री डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. विश्वनाथ,
0: well, I think, you know, if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So I'm sure they're just scoring at almost 10 an hour. And it's one of those games where you probably, as a batter, if you're not found form, you can find form because some of the bowling affair from Netherlands has been too friendly. And

0: But Dee Lead was wonderful to watch. 50 runs, he got half century of 45. The wicketkeeper, batter, 26 years of age. Very promising, you know, player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland. The Dutch women were flying in and out of the subcontinent to finish their exams. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her. She's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe. And she skipped it. And she's continuing on with their orange, you know, attire to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that. And I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool and for lesser known countries to endorse the game, and it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है, सर्वाधिक बार ऐसे छह बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छह बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है, जबकि इंग्लैंड ने 2009 में जो कि इसका पहला संस्करण था उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था, और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड, तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है। और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं, दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं, उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था, कलाइयों के सहारे से बहुत तेजी के साथ नहीं गई थी गेंद, एक रन और स्मृति मन ने ले लिया, 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर। भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74। तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है, बबेट डी लीट नीदरलैंड्स के कप्तान है, जिन्होंने आज बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था, दूसरे मैच कर रही है नीदरलैंड्स का। इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था, इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन, भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। एक कदम आगे बढ़ी थी, बेहतरीन तरीके से प्रहार करते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था। सीजर्स की अगली गेंद, एक बार फिर से एक कदम आगे निकली और गेंद हवा में है बहुत तेजी के साथ जा

0: रही है और अब जाके गमाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन का इशारा अंपायर की तरफ से।
1: ये लगा आभा का चौका
2: मिड ऑफ एंड द एक्स्ट्रा गर्फ इन अ फील्डर ऑन द फेंस। आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक टू हैव मिड ऑफ इनसाइड द सिग्नल बिकॉज शी इज डाउन द ट्रैक फ्रीइंग हर आर्म्स एंड गेट्स अ राइट फुट अवे एंड देन शी लिफ्ट्स इट इन द एयर विद ईज फॉर फोर्स एंड सिक्सेस।
0: जिस तरह से भारत की पारी बढ़ती जा रही है आगे एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जा रही है 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। सीजर्स की गेंद को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए भारतीय बल्लेबाज दोनों बीच मैदान पर खेल रहे हैं रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना बहुत तेजी के साथ रन बन रहे हैं 151 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सीजर्स आ रहे हैं उनकी गेंद ओवर पर गेंद को डीप विकेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव किया है

0: T20 cricket very seriously, and their celebrations are wonderful to watch.
1: बिल्कुल इस समय मंधाना और सैफ अली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, सैफ अली वर्मा ने 51 रन बनाए और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए. इस बीच गेंद शॉट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा. यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद 3 विकेट भारत को गिरे और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नजदीक से निकलती हुई ग्लव से टकराई और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया. इस बीच ही अगली गेंद थी राजकीर, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड में और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर. तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे. इस बीच ओवर पिच गेंद के डेरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया. 2 रन 2 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 रन बनाए. 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है. वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी. वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से.
0: इट्स माय कर्स.
1: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है. 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. ऋचा खेल रही है, ऋचा घोष विकेट की

0: Run rate 9.87 going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Herman Preet Kaur off the back foot cuts this one. They're on in tough single indeed. There's a chance of run out of this non strikers end. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
1: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं, पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर, शैफाली वर्मा आउट हुई थी। दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई। तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा, जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी। और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था। उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था। और इस तरह से

17.168 रन स्कोर था। और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज, वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने, लेकिन विकेट भी गिरे हैं। 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने। इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये 19वां ओवर यानी इसके बाद भी इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा। इस बीच डी राड गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया। हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन। ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप